जपौ हरिलाई कृष्ण जपौ हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई। हे कृष्ण।

बिनापाचार जिलु कोले बहनी म पदम प्रसाद चौलागाई वृद्धि सिद्धि गुरु गणपते साष्टाङ्ग यही गर्दछु।

जसराने मन मजुगुना जसारा पिगारने हिरागारी कहला कैलाश का सुजी को समाने में हिरा भन्ना लगे हाँ इंद्रपति मरण नरेला लगे भन्ना लगे।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पति प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्मत 2083 आषाढ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुलाई 22 तारिक श्रावण 6 गते बुधबार अष्टमी तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ।

नहीं। के होला भरी कसो गरी कहाँ के भन्नु सक्नु नहै। लाखौं चन्द्र सरी मनो पुनहरी कैलाश दरबारमा, नाना रत्न सोनाका पलङ्गमा स्वामीजीको पासमा। जुम्ला हात जोडी अघिल्तिर सरी सामने मुडा धरी, लागिन सुन्नकी पार्वती चरणमा पसेर बिन्ती गरी। हे समूह करुणा निधन भगवान, हे पणनाथ प्रभु, लीला माधवको गरेर मोदय धेरै सुनाउनु भयो। तृप्त तै पनि सुन्न मन जान लाग्दैछ, हे शङ्कर श्री सीतापतिको पर